Joy Alucas brings you the joy of summer. इस समर ज्वेलरी शॉपिंग का मजा लीजिए विद द कूलेस्ट डील्स फ्रॉम जॉय अलुकास। डायमंड और प्रीशियस स्टोन ज्वेलरी की खरीदारी पे पाएं फ्री कैश वाउचर्स, ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0% डिडक्शन एंड मच मोर। ये एक्सक्लूसिव समर ऑफर्स सिर्फ 30

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

होता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

0: 1991 की फिल्म फूल और कांटे, अजय देवगन एंड मधु, अजय देवगन's एक्टिंग डेब्यू ऑफ कोर्स, कुकु कोहली साहब द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, कुमार सानूवाल का याग्निक, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, मैनी मैनी ऑफ यू saying something without saying anything at all. Ah, this song. Oh, this takes me back to my college days. I used to love this. It's okay. I can read between the lines. Good morning.
1: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
2: Aapka apna Utsav Plus ab hai Star Plus. Utsav Gold hai Star Gold. Aur Utsav Bharat hai Star Bharat. Channel partners Top Up Foods and Pari Basmati Rice.
3: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
0: सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर टेकन फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ चांद मेरा दिल. द लास्ट टाइम आई प्लेड दिस सॉन्ग, मखमली आवाज जैसे गूंज हो रबाब की, नीलम प्रॉम्प्टली मैसेज मी टू से रबाब इज माय मम्स नेम. नीलम, आर यू लिसनिंग राइट नाउ? हाँ, यही तो खासियत है आपकी. दैट्स द टाइटल ऑफ द सॉन्ग, बाय द वे. गुड मॉर्निंग.

0: तेरे मेरे दरमियान रहता है जैसे एक निशान। तुम मेरे होते तो बेवक्त ना मिले होते तो। मुसाफिर कैफे का ये गाना रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज में। राघव कौशिक हैज बिकम एब्सोल्युटली सेंसेशनल फॉलोइंग दिस सॉन्ग फ्रॉम मुसाफिर कैफे। He's here, there, everywhere, all over social media. Rightly so. Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा Listener's Choice.
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
2: अब हम 16 साल की मासूम लड़की नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
3: शिकवे, शिकायतें तुमसे।
0: Watch सहर होने को है Monday to Friday 9 PM on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Vijay ji, thank you so much for your message. Arijit Singh, Nikita Gandhi, this one taken from Bhoot Bangla. Tu hi disda. Jahan bhi aap sun rahe hain, jo bhi is waqt kar rahe hain. Almost time to wrap the 8th month of 2026. Yes, Mr. Khan, you're right. It's almost winter.

ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
1: अब हम 16 साल की मासूम लड़की नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
2: शिकवे शिकायतें तुमसे।
3: Watch सहर होने को है Monday to Friday 9 PM on Colors TV.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

कर गया वो कैसे बाजार में ऐसे, शरीफों को हम रुस्वा नहीं करते मियां जुम्मन, तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय मेरी जान का दुश्मन, हाय।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।